जप आदि सच जुगाद सच है ही सच नानक होशी की सच तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विषम होए जाए हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे

जो हमारी बेद होती मेरे सतगुरा साबित तुम हर जान हो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता।

0: महाराज किसने कर हरिचंद कोपे कमान सवारंग ते बाणी थोड़ी जी महंगी है अर्थ वाल ध्यान दिया जे हरिचंद कोपे कोपे दर से हरिचंद गुस्से विच आ गया कमान सवारंग उन्हें अपनी कमान नू तीरा नू संभालिया पहला तीर छड़िया कह लगे प्रथम बाजियंग तार बाण प्रहारंग प्रथम दर से सब तो पहला तीर बाजियंग बाज दर का घोड़ा किसने मेरे चीने नू सामने रख के तीर चलाया पर गुरु गोबिंद सिंह कहने पहला तीर मेरे घोड़े के सिर विच आके वजा कह लगे हरिचंद कोपे कमान समारंग प्रथम बाजिंग तान बाण प्रहारंग कह लगे दुतिया ताक के तीर मोको चलाएंग दूजा तीर फिर मेरे सीने नू सामने करके रखिया कह लगे ने जदो इकोदम दूजा तीर चलाया कह लगे दुतिया ताक के तीर मोको चलाएं ते गुरु गोबिंद सिंह कहने रखियो दईव मैं दईव दर से वाहगुरु मेनू रखण वाला वाहगुरु नाल सी कान स्वय कै सदायंग ए तीर मेरे कन्ना दे नेड़े छू करके निकल गया पर रखण वाले ने मेनू तत्ती वाह ना लगन दिती कहने तीजा तीर कढ़िया बचित्र नाटक विच बचने कह लगे के हरिचंद कोपे कमान समहारंग प्रथम बाजिंग तानंग बाणंग प्रहारंग दुतिया ताक के तीर मोको चलायंग रखियो दईव मैं कान स्वय कै सदायंग कह लगे प्रीति है बाण मारियो तो पेटी मजारंग तीजा तीर हरिचंद ने कढ़िया ते मेरे ढिड नू सामने करके चलाया साहब कहने मैं पेटी बन्नी सी तृतीय मान मारेंग सो पेटी मजारंग मेरी पेटी विच वजा ते साहब उते फिर अगे लिखदे ने विद्यंग चिलकतंग द्वालंग पारंग पधारंग एदी तीर दी चुंज एनी कु तिखी सी कह लगे मेरी पेटी नू चीर के अगे ए विल गए जदों ए तीर वजा फिर गुरु के कीर्तनीय शब्द पढ़दे ने एदा पिछोकड़ ए वे ओ शब्द अगे अर्ध करना कह लगे तृतीय बाण मारंग सो पेटी मजारंग विद्यंग चिलकतंग द्वाल पारंग पधारंग फिर साहब कह लगे चुभी चिंच चरमंग कशु काए ना आयन कहने तीर दी तिखी चुंज पेटी विचो निकल के मेरी चमड़ी नू थोड़ी जी चुभी पेट विच थोड़ी जी तसी कह लगे कलंग केवलंग दास जानंग बचाएंग देखो निम्रता एनी मैं अपने कर्तव्य नाल बचिया कहिंदे ने चुंज ओ चुभ तां मैनू गई पर मैं रब दा शुक्र करना जिन्हें हाथ दे के मैनू रख लिया चुभी चंज चरमंग कशु ना ताए आयंग साहब कह लगे कलंग केवलंग दास जानंग बचाएंग जदों साहब कहिंदे ने ए तीर मेरी पेटी विच खुब गया ते तीर दी नोक अगे गई ते फिर गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे जबै बाण लाग्यो तबै रोस जाग्यो इतो यह शब्द आरंभ हुंदा है जब बाण लाग्यो तब रोस जाग्यो करन लै कमानंग हनिंग बाण तानंग सबै वीर ताए सरोगन चलाए तब ताक बानंग हण्यो एक जवानंग एक तीर पत्थे विचों कटिया कह लगे हरिचंद मारे तो जोधा लिता है एक तीर ओहदे सीने विच लगा हरिचंद दी मौत हो गई साहब दे बचन ने कहिंदे हरिचंद दे मरन दी देर सी जब बाण लाग्यो तब रोस जाग्यो करंग लै कमानंग हणक बाण तानंग सबै वीर ताए सरोगन चलाए तबै ताक बाणंग हण्यो एक जवानंग हरिचंद मारे सो जोधा लितारे सात करोड़ रायंग वाहे काल कायंग सबे त्रणंग त्याग भागै सबे त्रास भागै फिर साहब कहिंदे भई जीत मेरी कृपा काल के हे मेरे वाहिगुरु मैं जित के निकलिया
1: सतनाम करता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजुनी सैपं गुरपर साध जप आद सच

जो हमारी बेद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जान हो आपे खम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता।

राजे दी स्वतंत्रता नू तको दी खुल दिली नू कहिंदे ने उसने उस बच्चे नू दे लोरियां ते नाल उहने शब्द वरते आकड़ वे मुंडिया आकड़। ए इतिहास कई गथावां ऐसियां ने जिहड़ियां गुम हो गईयां। कहिण लगी आकड़ वे मुंडिया आकड़, रणजीत सिंह तेरा चाकर, सदा तेरी दाई ते महताब कौर दौड़दी आई। ओहदा खानदान ही गिण दिता। रणजीत सिंह नू कहा तू मेरे मुंडे दा चाकर है, सदा ओहदी सस है। सदा कौर कहण लगी सदा कौर मेरे मुंडे दी खड़ावी है। जिस राज विच एक कूड़ा ढोण वाली औरत नू इन्नी कु खोले, ओ महाराजे नू कहिंदी मेरा चाकर है, सदा एदी जिहड़ी सस ओ मेरी दाई है, सा मेरे मुंडे दी खड़ावी है, ते नाल कहिंदी जिहड़ी महताब कौर है मेरे घर दा कम करन वाली। कहण लगे जदों नौकर ने सुनिया ते शाम नू रणजीत सिंह कोल गया, कहण लगा महाराज अज मेरे कन सुन नहीं सके। कहिंदा की? कहिंदा मैं सुन के आया तेरे सारे खानदान नू लोरी विचों इक पासे ला दिते। ओ कहिंदी आकड़ वे मुंडिया आकड़, रणजीत सिंह तेरा चाकर, सदा तेरी दाई महताब कौर दौड़दी आई। रणजीत सिंह कहिंदा सवेरे पेश करो दरबार विच। सवेरे दिन ही चढ़िया ते कह दिता भी अज तेनू सरकार ने बुलाया, दरबार भी तेनू पेश होना पेगा। कहिंदे ने जदों ओ गई ते बच्चे समेत जाने, अज घर सोग दी लहर दौड़गी, पता नहीं की बनेगा। क्योंकि आखिर रणजीत सिंह दा दबदबा इन्ना सी जिन्हें वड्डे वड्डे पठाणा दे मुंह मोड़ दिते। ते कहिंदे ने जदों अज दरबार विच गई उहने सारे दरबारी इकट्ठे कीते। कहन लगे माई अगो वजीर कहिंदे ने तू आ रणजीत सिंह दी तुहीन कीती, इहदे खानदान दे लई शब्द किहड़े तू वरते ने। ते ओहदा अंदर कंब गया। रणजीत सिंह उठ के कहिंदा इशारा करके कहिंदा दरबारी नू ना इह शब्द नहीं। कहन लगे माई अपने इस बच्चे नू लोरी दे मेरे सामने, हुण तको किहो जिहा राजा है। ओ बेचारी डरे कहिंदा नहीं मेरा हुक्म है लोरी दे। ओने कंबदी दुमान विच जबान विच फिर लोरी दे दिती, आकड़ वे मुंडिया आकड़, रणजीत सिंह तेरा चाकर, सदा तेरी दाई महताब कौर दौड़दी आई। कुर्सी तो उठ के चरण पकड़ के कहिंदा मां अज मेरे अंदर नू संतुष्टि है, बाकी जितन मेरी प्रजा समझे रणजीत सिंह चाकर है असि ओहदे मालक हां, मैं समझांगा गुरु रामदास दी खुशी लै ली। मां अज मैनू पता लग गया कि वाकई मैं तेरा नौकर हां, जिदन प्रजा मनन लगता है तुसी साडे नौकर ते ओ मने जेड़े घरां विच लोकां दा कूड़ा सड़दे होण। कहन लगे इस माई दे बच्चे दे बराबर तोल के नू दौलत दिती जाए। कदी उस राजे दे जीवन नू तको प्यारियो, किन्ना कु इंसाफ पसंद है जदों ओ चिट्ठियां लिखदा है। इथों तक फकीर अजीजुद्दीन नू लिखदा है मेरा पुत्र खड़क सिंह, मेरा पुत्र शेर सिंह, कोई भी अपनी मन मर्जी नाल कुछ कहन ते उन्हां दी गल मनन तो पहला मेनू पुछ लेना किते मेरे पुत्र खून दा दावा करके ओ राज विच अपनी मत ना वरत। अगली गल उन्हें कही जदों मैं कोई हुक्म जारी करा ते ओनू परत के फिर मेरे को लै के आवो, किते गुस्से विच आ के मैं नजायज कलम ना चुक लवा। ओहदे जीवन नू जदों पढ़िया ते जेड़ा आपां दिन अज मनाने पए आ प्यारियो, 59 साल दी उम्र उन्हें भोगी है। ते उस दिन मैं अर्ज कीती सी उस वक्त दा कवि शाह मोहम्मद जेड़ा ओह तां विचारे तरले पिया लैंदा चला गया। एक मुसलमान कवि मैं उदन भी अर्ज कीते सन 4 बंद ओहदे, मैं फिर अर्ज करा ओह जंगनामा लिखदा ते मैं अर्ज करनी भी जेड़ा अंतला समा आया ओह किवें। बड़ा दर्दनाक सीन है। कहिंदे ने राजा रणजीत सिंह गद्दी ते वे ते शेरे पंजाब नू संबोधन करके ओने पहला 2 तां बंद कह सन, ए जग है सराए मुसाफरां दी, इथे जोर वाले कई आए गए, शहदाद नमरूद फराउन जाए, दावे बन खुदाए कहाए गए, अकबर शाह जाए विच दिल्ली, फेरी वांग बन जा रहे हैं पाए गए, शाह मोहम्मदा रहेगा रब सच्चा, वाजे कूड़ दे कई बजाए गए। ते जदो रणजीत सिंह दी गल करदा है उदन कूड़ दी गल नहीं, उदन कहिंदा मां बली रणजीत सिंह होया पैदा, नाल जोर दे मुल्क हलाए गया। कहन लगा फिर उन्हें कीता कि मां बली रणजीत सिंह होया, जान 50 वर्षा चंगा रज के राज कमाए गया। ओहदे लई शब्द चंगा वरते है, अच्छा वरते है, अच्छा रज के राज कमाए गया। अज शेरे पंजाब जदों रोगी हो गया, अकाली फूला सिंह शहीद हो चुके ने, हरी सिंह नलवा

गुरु अर्जुन विघ्न के नाशक, विघ्न के नाशक, श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी, गुरु हर कृष्ण मनावो बहोरी,

माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग एकंकारा सतगुरु

उस वक्त मना रहे हैं सब कहेंगे जी सर्वी सचे पातशाह जी बनाया अंतर जामी श्री गुरु रामदास साहब जी का जो अवतार होया सब संतान को बधाई होवे सवा पहर में अमृत वेले जसवंत कुमार प्रगट होए उस वे बाद भाई संतोष सिंह साहब ने लिखा है कि महाराज के प्रगट होने की इन्नी खुशी हुई वरुण देवता ने प्रगट करके अपने जल के रूप में बुद्धियां नदियां उस वक्त बागियां सवा पैर के करके बुद्धियां सारिया नदियां दुधी बागियां उस वक्त ऐसा ऐसी खुशी वरुण देवता ने मनाना किसी गुरु रामदास साहब के प्रगट होने से देवतिया ने मिल करके चंदन कसा के कल्प दृश्य फूलों दिया माला गुंद गुंद के चूना मंडी जो लाहौर के अंदर गुरु महाराज साहब का जन्म स्थान है जो श्री हरिमंदर साहब की शक्ल के नाल स्थान बनिया होया सुंदर बड़ा सुंदर जड़ती है उस मंदिर के उत्ते महाराज साहब के अवतार धारण की खुशी का संत संगत जी चरण कसा के फुल कसा के फुल दिया माला गुंद गुंद के उस मंदिर के उत्ते अर्पियां सुखे खुशी के जो शंख बजाए उसे देवते सारे देवतों ने मेरे को गुरु महाराज साहब के अवतार धारण की खुशी बूहे के अगे आके महाराज का जस गाया कीर्तन गाया क्यों राग रचाया अंत जगत राग राग ने मंगल गाया सारे संसार में इस प्रकार रंग प्रगट होया रागा रागनियों मिल मिल के देवतिया ने गुरु साहब का जस उच्चारण किया क्यों सवा पार जो करके अज अमृत वेले महाराज साहब आपकी वे पिता का शुभ नाम जेडे कई जन्मों को ला के तपस्या करते सन बाबा हरवाह जी नाम सी उन्होंने तपस्या इच्छा सी कि महाराज मेरे घर में आक आप अंतर्यामी बालक रूप में प्रगट हो माया दया कौर जी जो सतगुरों की माता सी ये भी नाल तपस्या कर रहे उन्होंने बहुत सारे जन्म गुजर गए सन इस जन्म में अंतर्यामी ने उन्हें इच्छा पूरी करके सतगुरु रामदास रूप अंदर प्रगट हो सके पातशाह इस प्रकार साहब संगत जी अज गुरपुरब है जिस दिन गुरु रामदास साहब जी ने अवतार धारण किया है अज श्री अमृतसर साहब इस गुरपुरब के नाई बड़ा चंगी कला के नाल मनाया जा रहा है बेअंत संत कीर्तन दिया चौकिया बड़े बड़े रागी मिल करके बेअंत संतों के इकट्ठे हो के सतगुरु सच्चे पातशाह के श्री दरबार साहब के अंदर गुरु के बाग के अंदर दीवार सजे हुए हैं तरह तरह के अपने जस के फुल गुरु महाराज साहब के पास शब्दों के राही कीर्तन के राही अनेक तरह दिन भेटा कर रहे हैं सभी उन्होंने प्यारियों अपना सुखी सुख प्यार बख्शे अब आप संगत इतने महाराज के सतसंग दरबार से गुरुगुरु को मना रहे हैं इन्हें सतगुरान साहब संगत जी महाराज की इस चर्च बड़ियाई है जो कही नहीं जाती आप हर वक्त समाज में ही लीन रहा कर दे कोई कारो विहार घट लाया कर दे आप जी भी थोड़ी जी जब बड़ी उम्र हुई 13-14 साल की उम्र वड्डी होगी उस वक्त पिता ने एक दिन कहा कि तुम कोई घर का कारो विहार करया करो बाकी ये सारे जिन्हें लोग होंगे वो लड़के थोड़ी उम्र के सारे घर के कारो विहार कर दे तुम कोई कार विहार क्यों नहीं कर रहे हो आप जी ने पिता के हरदास के अनुसार होकर जो मारा आप आज्ञा करो माता जी ने उस वक्त रात में कहे प्यों के उबाल के दे दिते चंगेर भर के घूमिया भी आपने दे दी गई कि लो जिस तरह होर बच्चे बेचने बाजार में जाके बेचना करो आप जी माता पिता की आज्ञा लेके चंगेर चक लिया है चाके लिया के एक बाजार के कोने पर खड़ गए जिन्हें होर बच्चे फोका दिंदे फिरते हैं के पा चने इन पा चने अब सेवे इन कुछ नहीं बोलते चुप किते खड़ोते उन्होंने चिर संगत महाराज साहब जी श्री गुरु अमरदास साहब जी के पास में जा रही है श्री गोविंदवाल साहब न संगत नू वेख के आप खड़े दर्शन कर रहे हैं एक साधु ने कहा कि महाराज मैनू चने दो आप जी ने एक मुठ भर के उसने दिखी कहते जी इन्हें नहीं सरना फिर दो मुठा दतिया फिर तीन दतिया चार दतिया पांच दतिया अखीर सारी चंगेरी
ਉਹ ਸਾਧਨ ਆਪਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪਵਾ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ। ਪਿਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਮ ਅੱਖ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕਰਕੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। 1616 ਬਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੱਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ 9 ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਦਾ 91 ਚ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ 16 ਦੀ ਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 1616 ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਂ ਆਪਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਇੱਕ ਰਫ ਚੰਦਰਾਂ ਵੱਲ ਚੁਕਲਾ ਕੇ ਤੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁੜਦਾ ਨੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਗਿਆ ਚੱਕੋ, ਉਦੋਂ

प्रचार किया अगे इस प्रकार तरीके चलद चलद बाबा चंदा सिंह जी ज्ञानी हुए।

जित मिले चुकी सब सो गो संतपी। तन सद सजी साजन वजी जियो पिंड दे प्रणाम।

0: बस है पठान, बस है बास पठान को दीनों बिपर बताई।
1: तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी भी सजी होई। गुरु रूप गुरु खालसा साध संग जी आओ, प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, चल रही लड़ीवार कथा विच श्रवण कर रहे हां प्रसंग श्री चमकौर साहब। अचानक तुरकां ने हमला किया, सहिदा बेग शरनी पिया, श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ने। दो तीन महीने का समा बड़ा सोहना लंघिया, अचानक एक ब्राह्मण ने पुकार की थी कि मेरी स्त्री नूं खो के लै गया पठान बसी पठाना वाला। इस प्रकार देवदास नाम है ब्राह्मण का, जाबर खां पठान है। महाराज जी ने बाबा अजीत सिंह जी नू 100 के करीब घोड़ सवार दे के भेजिया। शाम 2 घड़िया दिन बाकी सी जदों चले ने, सारा पेंडा तय करके उत्थे पहुंचे। रात नूं जाके घेरा पा लिया। गुरां दा वचन सी कि सिर्फ कल्ले पठान नूं ही लियाउणा, होर किसी नूं तंग नहीं करना। महाराज दा वचन मन के पठान नूं बन्न लिआंदा रस्सियां नाल, अते उस ब्राह्मण दी स्त्री नूं भी नाल लै के आए है। आ के महाराज नूं फतेह बुला के सजे हन दीवान दे विच। आओ अगे श्रवण करदे हां सतगुरु महाराज ने की सजा दित्ती, की उपदेश दिंदे ने खालसे नूं। प्यार सत्कार नाल गज के आखो, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु
0: साहिब जी। जो पई तुरत सुबत जै सहज सुभाए, जाए अचानक घेरो पाए।
1: सहज सुभाव की बिना किसी डर तो बिना किसी खौफ तो, ये साडा राज है, मैनू केड़ा कोई कुछ कह सकता, मैं जो मर्जी करा। इस तरह आराम दे नाल जबर खां सुता पिया है, अचानक ही जाके सिंघां ने उहदे घर नूं घेरा पा लिया।
0: किसो न आगे शस्त्र उठायो, गयो पठान सबंध चलायो।
1: क्योंकि हो सकता है रवि जी कहंदे ने किसी ने अग्गों शस्त्र नहीं उठाया, हो सकता वो इलाके दे बदनाम होवे जबर खां, पहला भी लोगों दियां धीआं भैणां चुक लिया होवे, ताइयों किसी ने उहदी मदद भी नहीं की है, कोई विरुद्ध भी नहीं बोलिया है। सिंघां ने जाके बड़े आराम दे नाल उसनूं पकड़ लिया।
0: जिनी को एक तुरंग चढ़ायो, एक रीत फल सबन सुनायो।
1: ब्राह्मणी नूं बाहर लिआंदा, पठान नूं भी खड़ा कर लिया, पिंड वालियां नूं इकट्ठा करके। सिंघां ने उहदा कसूर सुनाया, बई असीं इहनूं एवें नहीं लैके जा रहे, इहने आह कुकर्म कीता है, इस करके असीं इहनूं पकड़ के लै के

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुरु के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लैके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हुण उहनूं चंगीआं निहारियां खवाईआं चंगा घिओ आदक जां देना जां मिठा पा के देना ऐसियां निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: आज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेलां हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा लियाओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले तैयार करके ले आवो
0: सोने दे सोने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ये तैयार करके ले आओ
1: हुक्म मान सेवक किए त्यारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मन के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े उहदे वी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे तो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहणे छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कबका दे कर लियायो तहां प्रभु बिराजे बैठे जा
0: सोहणी लगाम पा के घोड़े नूं उत्थे लै आया जिथे सतगुरु महाराज

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुर्तीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ करना निद तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गै है के जवै, उकसे उपर चढ़बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दे गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे

महाराज वापस उतरिया एकदम धरती ते खड़े हो गए, पर सज्जी बांह नूं एक झटका वज्जिया थोड़ा जिहा, एकदम घोड़े ने छाल जो मारी। सतगुरु फुरतीले आप भी बहुत ने, एकदम दे नाल अणजाण बंदा हुंदा तां घोड़ा उहनूं सुट दिंदा, पर सतगुरु सच्चे पातशाह तां आप मालक ने, सृष्टि दे अंतरजामी सतगुरु जाणदे ने की होण वाला है। इस करके

0: महाराज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बादशाह जो नरंगा है वो तो भी नहीं डरते। ये तो बड़े भारी जिन्हों बाहों के इन्ना जोर है, इन्ने बली ने, इन्हों के सिंह इन्ने योधे ने, सो इस करके बड़े भारी योधे हैं।
1: देश उजाड़े छीने ग्राम कई बेर तीनों संग्राम,
0: इन्ह ने कई बारी अपने नाल जंग किया है, अपना जिहड़ा देश कहलूर है या होर इलाके ने, यह सारे इलाके कई बारी इन्ह ने उजाड़ दिते हैं।
1: मुखी सेना के मरे हमारे आद केसरी चंद जुझारे,
0: ये केसरी चंद तो आद लैके होर जिन्हें योधे सन सारे साडे जरनैल राजे महाराजे, ये इन्होंने बहुत सारे जंग दे विच

0: युद्ध विच टेके लड़ो जाओ फिर हुण जंग विच जित प्राप्त होवेगी।
1: अतो रिपन दल को दलो पकड़ो शस्त्र क्रुद
0: जाओ जाके मैदान जंग दे दुश्मन नु मारो ते अपने हत्थां दे विच शस्त्र पकड़ लो वीर रस विच आ जाओ ते जंग करो। यां गुरां ने हुण वचन करता हुण रक्षा भी करनगे। जे इन्ना क ना खिचण फिर आपां सिद्धे भी नहीं हुंदे। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे भाई गुरां ने जो वचन कहा है वह वचन जरूर कमाया करो। माड़ी मोटी ढिल दिखाउणी चंगी नहीं। इस तरह फिर आपां नूं घाटा पैंदा। जिन्हां जिन्हां ने भी गुरु के वचनां दे उत्ते पहरा दिता है एक एक वचन नूं कमाया है उन्हां नूं सतगुरु महाराज निहाल कर दिता है। हां जे कोई अवग्या हो जांदी तां माफी मंग लो। यही दस्सिया है माफिया मंग लिया करो। सवेरे दुपहरे शाम रात महाराज तो माफी मंगते रहो। महाराज मेर करो सातों को गलती हो जाती है सौ गल्लां हो जांदियां ने सातों पूरी रहत नहीं कमाई जाती। हां थोड़े सिख ही आ पर नहीं कई बार साडे कोल ढिलाइया हो जांदियां ने। इउं सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह तो माफिया मंग लईए कि महाराज असीं इन्ने योग नहीं हां सानू बख्श लो। इस तरह महाराज अगे हाथ जोड़ के बेनती करिए

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है युद्ध विच टिक के लड़ो हुण जाओ फिर जे साड़ी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र न क्रोध
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे जा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मनां दे दल नूं मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वर गए बचन सन वरसम ए वर हो गया खालसे नूं भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है एदी सिंघां नूं बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन
0: खालसे ने फिर जदों देखिया हुण बचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो वापस मुड़े पहाड़ियां वल नूं बहुत वीर रस अखां विच लालियां शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अरदमणी
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है भाव इहदा नाम ज्वाला बमणी दुश्मन नूं मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी
0: रिपो तो भाव दुश्मन नूं शमन करन वाली नाश करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईया।
1: श्री गुर थिर हवै तनुख संभारे
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा ली अपनी गलती का एहसास किया है उस वक्त गुरां ने अपना तनख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे
0: महाराज ने सत तीर आसमान वल नूं चला दिते।
1: परी गगन में गर्व गुंजार
0: आकाश दे विच बहुत भारी गुंजार होए जिवें बदल गरजदा बड़ा भारी।
1: बिसमाने रिप सुन तुंकार
0: जदों इस तरह आकाश विचों आवाज आई गर्जने दी दुश्मन बड़ा हैरान होया सुन के।
1: एक ही बार हटे सब सिंह
0: इको ही वार सारे सिंह हटे भाव पिछे दुबारा जिहड़े इधर नूं मुड़े आ रहे सन पिछे नूं वापस पहाड़ियां वल नूं
1: मिल गए। ज्यों भूखा सिंह
0: जिवें मिर्ग नूं देख के भूखा शेर पैंदा है टुट के इस तरह खालसा वध्या है।
1: अगर जो मारत आवत ताए
0: अगे जेड़े मारदे आउंदे सी ता के दौड़ के
1: कितक हते को मार हटाए
0: किन्ने क तां सिंघां ने पहाड़िए मार दिते अते किन्ने क मार के भजा दिते।
1: तोमर सेले सांग परहारे
0: ये सारियां इको ही किस्म बरछे दियां ने तोमर ते शेला ते सांग सोटी का फर्क है उहदी डांग दी लंबाई का फर्क है इस प्रकार उन्हां दे अगे दे फल का फर्क है देखण नूं इको ही चीज लगती है। सो इस तरीके नाल लंबे बरछे छोटियां बरछियां तो लंबे फल वालियां बरछियां मार मार के भजा दिते।
1: सिफर अगर कर किस कग मारे
0: कईयां ने अपनी तलवार दे नाल मारे ढाल दे नाल अपनी बचाओ कीते।
1: गुर बचते शहीद गन दौरे
0: जदों महाराज जी ने सत तीर आसमान वल चलाए तां शहीद सिंह जिहड़े हुंदे ने आकाशी फौजां जिन्हां नूं कहिंदे ने उह सारे दसवें पातशाह दे हुक्म विच चलदे ने करोड़ां दी गिणती च ने जो सृष्टि नूं चलाउण वाले ने। सो महाराज दा हुक्म पा के बहुत सारियां आकाश विचों फौजां उतर आईयां।
1: परे हेल कर भेरे पबारे
0: जदों उन्हां दा हल्ला होया दुश्मन इउं हो गए जिवें बौले हो जांदे ने इन्ना जबरदस्त हमला हो गया।
1: मची मार दीर्घ इक बारे
0: बहुत दीर्घ मार मची बड़ी तगड़ी मार मचाई शहीदां सिंघां ने आके।
1: मर मर परते पाए पसारे,
0: मर मर के लम्मे पै गए पाए अपने पैर पसार के। उसे वक्ती उन्हां दा तां वार नहीं चल सकदे, वो जी एक बरछा मारन सौ सौ बंदा कट्ठा ही डिगदा है।
1: जन्म लंग भगै को खाए,
0: मानो के जिवें

0: आप जी कृपा करके मेरे संशय का उत्तर दो जी।
1: हिंदू मुसलमान है घने,
0: हिंदुआ ते मुसलमाना की गिनती तो बहुत ज्यादा है जी।
1: जै कह जग में दुष्ट सो बने,
0: जिथे किथे तुरक जेड़े ने दुष्ट बने बैठे संसार दे विच होर भी।
1: पंथ खालसा हो जस थोरा,
0: ये जरा खालसा पंथ है ये थोड़ा जी है गिनती दे विच।
1: पयत कहो कहो को टोरा,
0: कोई कोई टोले ही मिलता सिंह है, कोई सिंह लभदा नहीं है थां थां दे उते।
1: सकल सतर को हाथ कर कैसे,
0: सारे दुश्मनां नूं मार करके किस प्रकार।
1: राज पाए किम कहिए तैसे,
0: आप जी ने कहा कि खालसा राज करेगा धरती ते, ये तो इन्ने ज्यादा ने तुरक तो फिर पहाड़िए होर राजे, ये खालसा गिनती च बड़ा थोड़ा जिहा है। ये दसो मेरे मन का शंका भई इन्ने बंदियां दे उत्ते थोड़ा जिहा खालसा किवें राज करेगा।
1: वधे तेज किम लह धरने,
0: तेज इन्ना किवें वधूगा इन्हां दा, किवें धरती सारी, तुसीं कहिंदे सारी धरती ते राज करना इन्होंने।
1: ठहरे राज कौन कर करने,
0: इन्हां दा राज जेड़ा ठहरेगा केड़ी करनी करके ठहरेगा।
1: बहुतन की किरत अलप करें किम,
0: ए बहुतियां दी किरत, बहुते बंदियां दी किरत भाव जेड़ा एक लख बंदे ने कम करना है, ए हजार बंदा किवें कर सकता है। मैं तो यह पुछदा भी इन्ने बंदियां दी किरत थोड़ा खालसा किवें कर सकता है।
1: बन अलप की बहुतन ते तिम,
0: सो इसे प्रकार अल्प थोड़िया दी बहुतियां तो किवें किरत हो सकती है।
1: हिंदू तुरकन बड़ो समाज,
0: क्योंकि हिंदू ते तुरकां दा समाज राज बड़ा वड्डा है।
1: सब रिप पर किम ठहरे राजू,
0: सारे दुश्मनां दे उत्ते खालसे दा राजू तो भाव राज किवें ठहरेगा।
1: कहिए पंथ सुने प्रभ तेरा,
0: सो महाराज सच्चे पातशाह आप जी का जो पंथ कहा जाता है ये किवें लाभ होवेगा पंथ नूं इस गल दा।
1: हान लाभ जाने इस बेरा,
0: सो आप जी दसो कि पंथ हान लाभ किवें प्राप्त करेगा, किस तरह राज करेगा।
1: वरतें वरतारा जग जथा,
0: जिवें जग दे विच वरतारा वरतेगा आने वाले समय च।
1: श्री मुख सुंदर ती कह तथा,
0: श्रोमणी मुख विचों सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने उस वक्त बड़े सुंदर सोहने बचन इस प्रकार कहे।
1: दोहरा वरतारा वरत जगत सुनो सिख चित लाए,
0: वरतारा वरतेगा जगत दे विच सुनो सिंघो चित ला के इस गल नूं।
1: सतगुर जैसी भावसी तैसी चलसी वाए,
0: ए तां साडी मर्जी ते हुंदा सारा कुछ, जिवें असीं चाहुंदे आं उसे तरह दी हवा चल पेगी, अपने आप ही दुनिया घुम जाएगी।
1: खाएगो खर्च लेंगो लाल,
0: सो इस तरीके दे नाल कहिंदे खाणगे खर्चणगे लएगो लाल। हुण इत्थों खालसे दे महाराज ने कुछ अर्थ कीते ने जिहड़े डूंघाई विच ने, खाएगो तो खा खर्च खखा ते लेगो तो लल्ला ते लाल, इस प्रकार अगली पंक्ति पूरी करेगी। सरकैगो युद्ध माहे करैगो निहाल, उस सरकै दे सस्से नूं लैणा, ये तीन अखर मिला के बनता जिहड़ा साडा खालसा है। ये खालसे दा एक पूरा सतगुरु ने उच्चारण किया इत्थे कि खालसा अगे नूं सरकेगा, जंग जितेगा, अगे वधेगा अते दुनिया नूं निहाल करेगा खालसा।
1: सरकै गो युद्ध माहे करो गो निहाल,
0: सरकै गो अगे नूं खालसा सरकेगा वधेगा अते दुनिया नूं निहाल करेगा।
1: कारी लग लक्ष्मी सिमट सगरी आने सार,
0: खारी तो भाव खारा समुंदर, उस समुंदर तक लक्ष्मी सिमटी जिन्नी कठी हुई है सारी आनेगा सार, जंग करके लोहा खड़का के। हुण इन्हां अखरां तो की लैंदे, खारी तो खखा खा री छड़ देना, खा लक्ष्मी तो लल्ला, खाल ਤੇ ਸਿਮਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਗਰੀ ਤੋਂ ਸੱਸਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੱਛਮੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
1: ਖੜੇ ਲੜੇ ਸੰਗਰਾਮ ਮੈਂ ਖਲਕ ਕਰੇ ਗੋ ਪਾਰ,
0: ਖੜ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਲਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਅੱਖਰ, ਖੜੇ ਤੋਂ ਖੱਖਾ, ਲੜੇ ਤੋਂ ਲੱਲਾ, ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸੱਸਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੜੇ
1: ਕਰੇ ਸਾਰ ਕਾ ਮੇਲ,
0: ਸਾਰ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹਾ, ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਬਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਨੇ, ਤੁਰਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ

0: पंक्तियां कह के चुप कर गए।
1: कहते लगी समाध पद लगी गुप्त रस गुप।
0: यों कहने समाधि ला ली, गुर चरणा विच समाधि लग गई ते लीन होके गुप्त रस लेता।
1: कल वरतारा पर सुने कलयुगता का दास।
0: जिहड़ा कलयुग दा वरतारा सुनेगा, ये साखी नूं सुने, कलयुग दा दास बन जाएगा।
1: पाप भगे भगती जगे धन सिख की आस।
0: कहने पाप ओहदे भज जाणगे, भगती ओहदे हिरदे जागेगी, तन है गुरसिखां दी आस पूरी होवेगी, जिहड़े गुरसिख होणगे। सो ऐसा महाराज ने वचन सुना दिता है। ये ढंग दे नाल गुरां ने खालसे नूं सोहणा सुनाया इतिहास। आउण वाला समा मुकदी गल मुकाईए बई, अमर छको दाड़ियां, जिहड़े कर दाड़ियां अपनियां रख लो भाई। महाराज कहिंदे आपे ही शूद्र बन जांदे ने, आपे ही लोग तंबाकू जा पीण लग जांदे ने, आपे मलेश बन जांदे ने। ऐसा भयानक समा है कलयुग दा। इको ही वचन कीता कि अमृत वेले उठ के बाणी पढ़ो, अमर छको, गुरु वाले बनो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मन्नो। यही सोहना उपदेश हुंदा। बाकी इह सारियां चीज़ां तां विस्तार नाल तां आउंदियां ने कथा विच। अमृत वेले भी ताइयों विस्तार हुंदा है कि हुण भी कि क्योंकि कलयुग के जीवों नूं शंके बहुते हुंदे ने, शंकियां दी निवृत्ति वास्ते इन्ना कुछ दसना पैंदा, नहीं तां सारे नालों सौखा काम महाराज इक कह देण भी उह वाहिगुरू वाहिगुरू करिया कर भाई। हुण जिहदे बाबा दीप सिंह जी वर्गे हुण उहदा कहण सत बचन जी, उह वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग जाणगे भई किहने कहा, महाराज जी ने कहा। यह साडे वर्गे हुंदे क्यों कहीए, ये कहण दा की फायदा, फिर की बनेगा, गात्रा पा के की बनेगा, अहीं 50 प्रश्न करने अग्गों। इसे करके विस्थार करना पैंदा। तो महाराज कहने जे वैसे ही एक गल मान लो, सारियां गल्लां छड़ दियो पर नहीं मानते, फिर भी कहिंदे आह गल क्यों, आ किवें, इहदा की लाभ है। पर सतगुरु कहिंदे जे सारे जने इको ही वचन मान लो, उस विच ही भला है। महाराज वो किहड़ा वचन कहिंदे?

3 बजे 2:30 बजे के करीब 3 घंटे पहला सूरज चढ़न तो पहर रात होंगी या समय बद करिए 6 तो 9 सवेरे पहला पहर बन गया 9 तो 12 2 पहर कहने जिन्हों 12 तो 3 तीजा पहर हो गया 3 तो 6 चौथा पहर ये दिन दे पहर बने इसे तरह रात दे तो इनू जेड़ा है पहर रात रही कहते ने पहर रात रही 3 घंटे रात रही हो जो 2:30 बजे 3 बजे के करीब सर्दियां चलो 3 बजे हो गए गर्मियां 2:30 बजे हो गए इन्ना क समा तो परिपक्वता नाल निभावे इशनान करे फिर सुचम रखे संजम

0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहने जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै ले, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल कि भी ये सिख है।
1: मेरो सिख आन सब त्याग पिठी ब्राह्मण दान न लागे।
0: और जेड़े मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेड़े हुण आपां नूं मानदे ही नहीं गे गुरु घर नूं नहीं मानदे एवें, उन्हां ब्राह्मणां नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रिहा ही नहीं है, वह सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा जेड़ा गुरु घर दा है, श्रद्धालु है, प्रेमी है, किरत होर नहीं करते, कई ब्राह्मण गुरु घर के प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़न वाले बन गए, चरण पावलिए बन गए, सतगुरु कहने चलो उन्हों का दान एक वखरा है, वह तो एक गुरसिख है, भाव कहण का सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जाए खंडे बाटे दा अमर छक लवे गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत वलेवा साडा होना चाहिए। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारयां नाल ही वरतना, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ साहिब